0: बहत्तर
1: सन्तानब्बे चार सत्र पचहत्तर चार बहत्तर अन्ठानब्बे पाँच बिस उनासाठी चार एकचालिस

0: हजुर अपूर्व आवाज इटली एफएम 92.5
1: बॉलीवुड अनलिमिटेड दैट्स माय सॉन्ग बैक टू बैक ओनली ऑन इटली एफएम 92.5 मेगाहर्ट्ज़ इटली एफएम.

0: लगनको साइत निक्लेर जाला, बारीको भत्तेर भान्सेले खाला है।
1: ए बजान है।

0: बसंत को माया लुहावा चलदा, 16-17 को उमेर मा जोबन को लहर चलदा, कसे कसे ले ती तो मीठो याद हर तो दिए के होलन है ना। हो ती याद हरु नहीं हुन कुसुमे रुमान छादायो
1: तकाउने स्वामी सिते।